0: के मेगाहर्ट्ज। दिवे ही एफएम, दिवे ही नायको, नौ दिए एक मेगाहर्ट्ज।
1: अलिनोर

ए लियुमुकवा हागी गतकी को बाबा अन्न हफ्ता के पय इंतजार कोल्लबा मे हफ्ता के बैकुलुमुग बैवरीवी रोमी मिजना अहमद शाफी मूसा रश्वान फिजान अब्दुल्लो यामिन रशीद युसरा फहीदा इब्राहिम सकीना रमला इब्राहिम नायला फातिमा तशीफा वाहक लियोनी अली राजी उफद्दा एकुलवाली अहमद रमला

हमको नहीं पता सर सही क्या है और गलत क्या है सर. बस छोटो बाला से वो यही कोशिश किया है सर कि सही करूं. मेरा बाबा ने बोला था बचपन में कि देवी पढ़ो लिखो, तो हमने बीएससी कर लिया सर. फिर हमारा माँ ने बोला शादी कर लो देवी, तो हमने शादी कर लिया. फिर मेरा हस्बैंड अनिरुद्ध उसने बोला नॉर्वे जाके सेटल करेगा, वो सही है, तो हमने वही किया सर. फिर नॉर्वे वाला ने बोला कि बच्चा लो फॉस्टर घर में अच्छा रहेगा, वो वही सही है. पर सबका सही करते करते हम इतना गलत कब हो गया पता ही नहीं चला. पर आज हम सबका बताया हुआ सही नहीं करेगा सर. हमको जो सही लगता है हम वही करेगा सर. हम अच्छा माँ है

0: बुरा माँ है पता नहीं, पर माँ माँ हूँ सर। और मेरा लिए यही सही है कि हम मेरा दोनों दोनों बच्चा लोग के लिए लड़ूं, एक कोर्ट में अगला कोर्ट में, जिस जिस जगह हमको न्याय मिलेगा, दुनिया का कोई भी जगह, वहां जाके हम लड़ूंगा, क्योंकि एक माँ के लिए यही सही है सर, यही सही है।
1: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है? मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दोग में दम बार गड़ सुमिनट कॉम में हफ्ता को स्कूरी एक गिंदा बालाना साड़ी मी शोग गेनेस्ते केस्त डायलॉग के एम में गिन सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को इफार नगा गुरतुं खास हादिया एली बेने एम में गिन सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगाणी कॉम में महे गिवस एम में फहुशोगा
2: गेस्ट डायलॉग मी वाल्दिनी मी हफ्तागे गेस्ट डायलॉग मी बाया जवाब फोनो मुदानी पीएसएम या मी देर को बालालन सली शोया मी हासा मो शोगे इतरु बैतक दिम गे कुरिंग दिवि अमिल्ला राव गे लव हिमनाल देना लवे फो शोगे कुरिंग कुरि बैतक आयकी का बदल कोलाना

0: हमको नहीं पता सर सही क्या है और गलत क्या है सर. बस छोटो बाला से वो यही कोशिश किया है सर कि सही करूं. मेरा बाबा ने बोला था बचपन में कि देवी पढ़ो लिखो, तो हमने बीएससी कर लिया सर. फिर हमारा माँ ने बोला शादी कर लो देवी, तो हमने शादी कर लिया. फिर मेरा हस्बैंड अनिरुद्ध उसने बोला नॉर्वे जाके सेटल करेगा, वो सही है, तो हमने वही किया सर. फिर नॉर्वे वाला ने बोला कि बच्चा लो फॉस्टर घर में अच्छा रहेगा, वो वही सही है. पर सबका सही करते करते हम इतना गलत कब हो गया पता ही नहीं चला. पर आज हम सबका बताया हुआ सही नहीं करेगा सर. हमको जो सही लगता है हम वही करेगा सर. हम अच्छा माँ है बुरा माँ है पता नहीं, पर माँ हूँ सर. और मेरा लिए यही सही है कि हम मेरा दोनों दोनों बच्चा लोग के लिए लड़ूं. एक कोर्ट में अगला कोर्ट में जिस जिस जगह हमको न्याय मिलेगा दुनिया का कोई भी जगह वहां जाके हम लड़ूंगा, क्योंकि एक माँ के लिए यही सही है सर, यही सही है.
1: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है. मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दोग में दम पार गड़ सुमिन कम हफ्ता को स्कूरी एक गिंदा बालाना साड़ी मिशो के गणस्ते केस्त डायलॉग के एम में गिन सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को इफार नगा गुरतु खास हादिया ली बेने एम में गिन सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगाणी कोमे महे गिवस एम में फहुशोगा
2: केस्त डायलॉग. ফিল্মী দুনিয়া কুড়ি উফাদ্দাফাওয়া ফিল্ম তং আলং উফেদুমাকি ওয়ারং আমুকামে এ ফিল্মেন আলং এহেন মুড়িং আ বেলুন তেরিনতা কং আমাজ কং আ স্টাইলেগ হুশালা দেকামে বাইফার ফিল্ম তাকলিবে ইতুর কুড়িয়েরুমে মি হফতাগে এরা মিহার মি ব্যাগ মি বালালানি এফাদা ফিল্মকা
3: এরা মিহার

हमको नहीं पता सर सही क्या है और गलत क्या है सर. बस छोटो बाला से वो यही कोशिश किया है सर कि सही करूं. मेरा बाबा ने बोला था बचपन में कि देवी पढ़ो लिखो, तो हमने बीएससी कर लिया सर. फिर हमारा माँ ने बोला शादी कर लो देवी, तो हमने शादी कर लिया. फिर मेरा हस्बैंड अनिरुद्ध उसने बोला नॉर्वे जाके सेटल करेगा, वो सही है, तो हमने वही किया सर. फिर नॉर्वे वाला ने बोला कि बच्चा लो फॉस्टर घर में अच्छा रहेगा, वो वही सही है. पर सबका सही करते करते हम इतना गलत कब हो गया पता ही नहीं चला. पर आज हम सबका बताया हुआ सही नहीं करेगा सर. हमको जो सही लगता है हम वही करेगा सर. हम अच्छा माँ है बुरा माँ है पता नहीं, पर माँ हूँ सर. और मेरा लिए यही सही है कि हम मेरा दोनों दोनों बच्चा लोग के लिए लड़ूं. एक कोर्ट में अगला कोर्ट में जिस जिस जगह हमको न्याय मिलेगा दुनिया का कोई भी जगह वहां जाके हम लड़ूंगा, क्योंकि एक माँ के लिए यही सही है सर, यही सही है.